0: मैनेजर साहब, मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए, मुझे मेरे घर जाना है।
1: जब तक तुम्हारा 2 साल का अग्रीमेंट खत्म नहीं हो जाता, ना तुम्हें अपना पासपोर्ट मिलेगा और ना तुम अपने देश जा सकते हो।
0: किस बात का एग्रीमेंट? एग्रीमेंट में तो ये भी लिखा था मुझे हर महीने मेरी सैलरी मिलेगी, नहीं मिली 8 महीनों से, और अब चाहिए भी नहीं मेरे को। मेरे को मेरा पासपोर्ट चाहिए, मुझे मेरे घर जाना है।
1: तुझे एक बार का आवाज समझ नहीं आता? जब तक तेरा 2 साल का अग्रीमेंट खत्म नहीं हो जाता, ना तू अपने घर जाएगा और ना अपने देश। अब निकल यहाँ से, चुपचाप काम कर अपना।
0: घर नहीं जा सकता? हे बाबा श्याम, अब तू ही धनी है।
1: तुम्हारा बाबा श्याम धनी है यहाँ से 7 समुद्र पार। यहाँ पे तुम्हारा धनी वही है जिसने तुम्हें वीजा दिया और जिसके पास तुम्हारा पासपोर्ट है।

महाराज तो कैसा लगा आपको गाना? मैं शिव का हूँ शिव मेरे, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय शंकर, जय महाराज, टेक केयर।

चिंटू तू बहुत बड़ा हो गया, अब मैं तुझे अपने कंधों पे कैसे उठाऊं।

अभिभावक नमस्कार, क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखना चाहते हैं? तो आइए बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि खेल खेल में।

अभिभावक नमस्कार, क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखना चाहते हैं? तो आइए बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि खेल खेल में सीखने, संस्कार, अनुशासन और रचना

अभिभावक नमस्कार, क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखना चाहते हैं? तो आइए बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि खेल खेल में,

आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश

पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो DS 89.6 सुनें और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DS साइंस अकेडमी।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार, सत श्री अकाल। गंगापुर सिटी में आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और गंगापुर सिटी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के साथ। अब सुनेंगे आप थोड़ी देर में आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: दोस्तों।
1: हेलो,
0: नाम बताएं।
1: जागूजर।
0: क्या नाम है?
1: जागूजर।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हिमाचल सिटी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: लम्बा रास्ता बाढ़ के रिश्ते।
0: हाँ जी,
1: लम्बा रास्ता बाढ़ के रिश्ते, रास्ते डड्डी।
0: अच्छा अच्छा, सुना रहे सर आप।
1: सर आप जल्दी सुनाना है ना।
0: ओके।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, नाम बताएं।
1: मेरा नाम शांति पटेल है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: शांति जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया,
0: बिल्कुल सुना था आपने, फरमाइश का ही गाना।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताएं सर
1: जी। मेरा नाम है प्रियांश।
0: प्रियांश जी कहाँ से बात कर रहे हैं
1: जी? मैं बात कर रहा हूँ सवाई माधोपुर मलाना डिंगा महाराणी से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो से?
1: मैं सुनना चाहता हूँ कल्याणी सॉन्ग।
0: कल्याणी सॉन्ग?
1: यस
0: बिल्कुल, सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का एक।

अभिभावक नमस्कार, क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखना चाहते हैं? तो आइए बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि खेल खेल में सीखने, संस्कार, अनुशासन और रचनात्मक गतिविधियों के साथ होती

0: शुरुआत आज ही कीजिए।
1: हेलो
2: हेलो नमस्ते
1: सर। नमस्कार, नाम बताएं आपका।
2: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ आगे जी।
1: गाना बताएं चौधरी जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: गाना है चांद तारों में नजर आए।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश कैसा। हेलो
3: हेलो

0: बच्चों के संग हर दिन खा सकते हैं।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: हेलो
2: जी, नाम बताएं सर।
3: नाम रूपचंद गोयल, जिला बाड़मेर, राजस्थान।
2: गोयल जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
3: आज हमारे यहाँ मतदान हो रहा है, इसलिए मतदाता जागरूकता पर कोई गीत सुना दीजिए अपनी पसंद का।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश।
4: हेलो

सुनो सुनो गंगापुर वासियों, बात हमारी ध्यान से सुनियो। चुनाव का आया है मौसम, अपना वोट समझदारी से चुनियो। भाई बहना, माता

0: अपनी कहानी गंगापुर की बात निराली।
1: नाम बताएं।
2: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: सिस्टम बिचारा छोरा जाट का।
1: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश भाई।

अभिभावक नमस्कार, क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखना चाहते हैं? तो आइए बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि खेल खेल में सीखने, संस्कार, अनुशासन और रचनात्मक गतिविधियों के साथ होती है।

0: हेलो
1: नमस्ते सर जी।
0: सर नमस्कार, नाम बताए आपका।
1: जम्मू से केशव शर्मा और सुषमा रानी।
0: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डी एस आज?
1: आज ये सर जी फिल्म महबूब की मेहंदी का अपना है तू बेगाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं, मंद रवि की आवाज है।
0: बिल्कुल सुना रहे सर आपने, तो मैं इसके गाना रेडियो डी एस सुन के चला।
1: ओके सर जी, थैंक यू।

प्रिय अभिभावक नमस्कार, क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखना चाहते हैं? तो आइए बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि खेल खेल में सीखने, संस्कार, अनुशासन और रचनात्मक गतिविधियों के साथ होती

0: शुरुआत आज।
1: हेलो
2: जी, नाम बताएं।
1: नमस्कार जी।
2: नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
1: हाँ, ऋषि भाई, मैं रसूल खान बोल रहा हूँ।
2: रसूल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सेवा से बात कर रहा हूँ।
2: बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: अरे सर, गाना तो अपन की तुम्हारी ना हमारी सबकी पसंद का गाना सुनेंगे। तो पुराने गाने उम्मीदवार है
2: जी, बताएं।
1: लाल दुपट्टा मंगमल का फिल्म का गाना है, वो है तेरे साधना तुम हमसे दूर रह के।
2: तुम हमसे दूर रह के क्या करते थे साधना?
1: हाँ, लाल दुपट्टा मंगमल का, गुलशन कुमार।
2: बिल्कुल बिल्कुल, सुना रहे सर आपकी फरमाइश।

सुनो सुनो गंगापुर वासियों, बात हमारी ध्यान से सुनियो। चुनाव का आया है मौसम, अपना वोट समझदारी से चुनियो। भाई बहना, माता बुजुर्गों,

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: टू टेलर खानपुर बड़ौदा।
1: कहाँ से? खानपुर बड़ौदा से बोल रहे हैं सर, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
0: ओवरब्रिज खानपुर बड़ौदा से बोल रहे हैं।
1: गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो से?
0: कोई पुरानी फिल्म को सुना दे, अमिताभ बच्चन को गाना।
1: चलो ठीक है सर, सुना रहे हैं।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: हेलो,
1: नाम बताइए सर आपका।
0: विवेक जी।
1: विवेक जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीए से?
0: मीना जी की मीना।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश कैसा?

0: हेलो सर, नमस्ते।
1: नमस्ते, नाम बताएं आपका?
0: यशपाल पटेल।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
0: सागर जिला मध्य प्रदेश।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डे से?
0: बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे।
1: सुना रहे हैं सर आपको, आपकी समय इसके गाना।

अभिभावक नमस्कार, क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखना चाहते हैं? तो आइए बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि खेल खेल में सीखने, संस्कार, अनुशासन और रचनात्मक गतिविधियों के साथ

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताए सर।
1: दीपक,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं? बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: क्रिश राव का टफ।
0: ठीक है सर, सुना रहे हैं।
1: थैंक यू सर।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: आरजी गुजर।
0: गाना बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: कब्जे सॉन्ग।
0: बिल्कुल सुना रहे।
2: Ha ha ha.

चेहरे में एक नई कहानी, मेहनत से जिसने नाम बनाया, इस माटी ने उसको गले लगाया। खेती की खुशबू, शहर की रौनक, अपनों की बातें, दिल की धड़कन, हंसी खुशी

0: हमें सुनाइए तलतेजीज की आवाज में के उम्रा
1: गाना बताएं सर।
0: गाना हमें सुनाइए तलतेजीज की आवाज में के उम्रा और जान।
1: ये गाना बताएं।
0: उम्रा और जान फिल्म का है, तलतेजीज की आवाज।
1: ठीक है सर, कोई सा भी गाना सुना।

0: वक्त हो चुका है 11:45 का। इस वक्त आप मेरे साथ 89.6 रेडियस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियस पर।
1: हेलो
2: हेलो सर, नमस्ते।
1: नमस्ते, नाम बताएं।
2: सिमरन पटेल।
1: सिमरन पटेल कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: सागर मध्य प्रदेश।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: जो तू रू से जानिए।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में। खुल के धन्यवाद।

अभिभावक नमस्कार, क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखना चाहते हैं? तो आइए बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि खेल खेल में सीखने, संस्कार, अनुशासन और रचनात्मक गतिविधियों के साथ होती

0: मेहरबान पटेल।
1: मेहरबान जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: सागर मध्य प्रदेश।
1: बिल्कुल बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते रेडियो डीएस से?
0: सर वो सुनना है गोरा काला फिल्म का।
1: गाना कौन सा है सर, गाना बताएं।
0: धीरे धीरे बोल कोई सुन।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।

खासक किससे पुराने यादें सुहानी, हर चेहरे में एक नई कहानी, मेहनत से जिसने नाम बनाया, इस माटी ने उसको गले लगाया, खेती की खुशबू, शहर की रौनक, अपनों की बातें, दिल की धड़कन, हंसी

0: हेलो सर जी, नाम बताएं।
1: जी मेरा नाम ललित कुमार मीणा है और मैं गंगापुर सिटी से बात कर रहा हूँ।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं सर कोटे सिक्के चलेंगे करोड़ों में, डांडा न्यूली वाले का है ये।
0: जी बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपका आपकी फरमाइश से गाना रेडियो डेस्क में खुल के। धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: कोमल।
0: कोमल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापति जी।
0: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: दिल ले गया परदेसी कोई रोक ना था।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का ही गाना।

0: घड़ी खम्मा सवाई माधोपुर थारो मारो रेडियो डीएस 11.6
1: गंगापुर सिटी रोड।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: वंदना।
1: बताएं वंदना जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: एक धरती पे चांद तुझे आसमान में।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं वंदना जी आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: लक्ष्मी।
1: लक्ष्मी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: सैनिक नगर।
1: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: आंखों में बसे हो तुम।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में। खुल के धन्यवाद।

अभिभावक नमस्कार, क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखना चाहते हैं? तो आइए बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि खेल खेल में सीखने, संस्कार, अनुशासन और रचनात्मक गतिविधियों के साथ होती है।

अभिभावक नमस्कार, क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखना चाहते हैं? तो आइए बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि खेल खेल में सीखने, संस्कार, अनुशासन और रचनात्मक गतिविधियों के साथ

गुड आफ्टरनून दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है, एक बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 99.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाई। सब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहे तराने 99.6 रेडियो डीएस पर।

0: फरिश्तों की नहीं।
1: हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग जंगलों और झोपड़ियों में रह रहे थे, उसी समय भारत की जमीन पर एक ऐसी सभ्यता बस चुकी थी जहां शहर योजना से बने थे, नालियां जमीन के नीचे बहती थी और हर घर एक नियम के तहत खड़ा था। यह थी हड़प्पा सभ्यता। लेकिन सवाल यह है, इतनी उन्नत व्यवस्था अचानक कैसे बनी? वे लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और फिर धरती से गायब कैसे हो गए? ऐसे ही रोचक फैक्ट हड़प्पा सभ्यता की इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको ऐसी ही रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब। लेकिन अफसोस, उस वक्त किसी ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब आया साल 1856। अंग्रेज इंजीनियर जोन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्हें पटरियों के नीचे बिछाने के लिए पत्थर नहीं मिल रहे थे। तभी उनकी नजर हड़प्पा के उन ऊंचे टीनों पर पड़ी। उन्हें लगा कि यह ईंटों की मुफ्त खदान है। मजदूरों को आदेश दिया गया और देखते ही देखते हड़प्पा की लाखों प्राचीन ईंटें उखाड़ ली गई जो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले पकाई थी। उन्हें तोड़कर रेलवे ट्रैक के नीचे दबा दिया गया। लेकिन इस विनाश के बीच सर अलेक्जेंडर कनिंघम को वहां कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। एक पत्थर की मोहर पर एक सांड बना था और ऊपर एक ऐसी लिपि लिखी थी जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। कनिंघम जानते थे कि यह चीज सिकंदर के काल से बहुत पुरानी है, लेकिन वह कितनी पुरानी है यह गुथी सुलझ नहीं पाई। सच्चाई को बाहर आने के लिए 1920 तक का इंतजार करना पड़ा, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक सर जोन मार्शल की लीडरशिप में खुदाई शुरू हुई। पंजाब में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की जमीन खोदी और सिंध में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों को हटाया। जैसे जैसे मिट्टी हटी, अंग्रेजों का वो भ्रम भी टूटता गया कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश था। वहां नीचे झोपड़ियां नहीं थी, वहां 2 मंजिला पक्के मकान थे, वहां जंगल नहीं था, वहां दुनिया की सबसे बेहतरीन अर्बन प्लानिंग थी। 1924 में जब इस खोज का ऐलान हुआ तो पूरी दुनिया सन रह गई। भारत का इतिहास अचानक 2000 साल और पीछे चला गया। दुनिया को मानना पड़ा कि मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ साथ भारत में भी एक तीसरी ओर सबसे उन्नत सभ्यता मौजूद थी। और यह खोज सिर्फ हड़प्पा या मोहनजोदड़ो तक सीमित नहीं रही। जब बाद में खुदाई का दायरा बढ़ा तो पता चला कि यह सभ्यता कितनी विशाल थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्रमुख शहरों समेत कई प्राचीन गांव सिंधु नदी के किनारे पाए गए थे, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। लगभग 100 साल से इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स की खोज होती रही है और तब से अब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की 10,400 से भी ज्यादा साइट्स को खोजा जा चुका है। खोजी गई साइट्स में से करीब 100 साइट्स इंडस रिवर के करीब पाई गई, जबकि लगभग 500 साइट्स घगर हकरा रिवर के आसपास डिस्कवर हुई है। यह खोज आज भी लगातार जारी है। लोथल गुजरात में ईंटों से बना विशाल डॉकयार्ड बंदरगाह मिला जो साबित करता है कि हमारे पूर्वज समुद्र के रास्ते दुनिया से व्यापार करते थे। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली यह सभ्यता उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को अगर मिला भी दे तो उनसे भी दुगनी बड़ी थी। तो आइए जानते हैं कहानी दुनिया की इस प्राचीन और महान सिंधु घाटी सभ्यता की। 5000 साल पहले बिना मशीनों और आधुनिक औजारों के हड़प्पा के लोगों ने इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर आखिर कैसे विकसित कर लिया? वहां के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और कैसे सोचते थे? और हड़प्पा के ऐसे तथ्य जो आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस कराएंगे। दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो रातों रात खड़े नहीं हुए थे। ये कोई जादू नहीं था, ये हजारों सालों के संघर्ष और इंसान के दिमाग का नतीजा था। इसकी कहानी शुरू होती है हड़प्पा बनने से भी 4000 साल पहले। आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में बोलन दर्रे के पास एक जगह है, मेहरगढ़। यही वो जगह है जहां भारतीय उपमहाद्वीप में इंसान ने पहली बार अपनी तकदीर बदली। यहां हमारे पूर्वजों ने शिकार करने के लिए पत्थर के औजार छोड़े और खेती करने के लिए हल उठाया। ये 7000 ईसा पूर्व का समय था। इंसान अब जानवरों के पीछे भागना बंद कर चुका था। उसने एक जगह रुकना सीखा। उसने पहली बार गेहूं और जौ उगाना शुरू किया। भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया। मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता की लेबोरेटरी थी जहां पहली बार गांव बनने की नींव रखी गई। हजारों साल बीते, आबादी बढ़ने लगी, अब मेहरगढ़ के पहाड़ी इलाके इन लोगों के लिए कम पड़ने लगे। उन्हें ज्यादा पानी चाहिए था, उन्हें उपजाऊ जमीन चाहिए थी। इसलिए 3300 ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत बड़ा माइग्रेशन शुरू हुआ। ये लोग पहाड़ों से उतरे और सिंधु और सरस्वती, घग्गर हकरा नदियों के विशाल और समतल मैदानों की तरफ बढ़े। यह दौर था अर्ली हड़प्पन फेज, जब नदियों के किनारे छोटे छोटे कस्बे बसने लगे, जैसे कोटदीजी और आमरी बस्ती। लेकिन ध्यान दीजिए, यह अभी भी वह हड़प्पा नहीं था जिसे हम जानते हैं। ये लोग अभी सीख रहे थे बाढ़ से कैसे बचना है। उन्होंने अपने कस्बों के चारों तरफ कच्ची दीवारें बनाना शुरू किया। वे कोपर का इस्तेमाल सीखने लगे थे। ये एक नेटवर्किंग का दौर था, जहां अलग अलग कबीले एक दूसरे से जुड़ रहे थे और एक कॉमन कल्चर जन्म ले रही थी। और फिर आया 2600 ईसा पूर्व का समय। इतिहासकार इसे कहते हैं मैच्योर हड़प्पन फेज। ये वो समय था जब विकास की रफ्तार ने अचानक गियर बदला। वो छोटे छोटे कस्बे जो नदी के किनारे बसे थे अचानक विशाल महानगरों में बदल गए। और यहाँ एक बहुत ही अजीब चीज हुई। कश्मीर से लेकर गुजरात तक लाखों किलोमीटर के दायरे में लोगों ने अचानक एक ही तरह से जीना शुरू कर दिया। आप किसी भी शहर में चले जाइए, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो या कालीबंगा,

पहला शहर था जो ग्रिड सिस्टम पर बना था। इतिहासकारों ने जब खुदाई की तो वे हैरान रह गए। यहाँ की सड़कें एक बेहतरीन ढंग से बनी थी। मुख्य सड़कें बिल्कुल सीधी उत्तर से दक्षिण जाती थी और छोटी गलियां उन्हें ठीक 90 डिग्री राइट एंगल पर काटती थी। ये बिल्कुल शतरंज की चेसबोर्ड जैसा डिजाइन था। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क, जिसे पुरातत्वविद राजपथ द फर्स्ट स्ट्रीट कहते हैं, वह करीब 10 मीटर चौड़ी थी। इतनी चौड़ी कि दो बैलगाड़ियां आराम से एक साथ निकल सके। और यह डिजाइन सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं था, यहां साइंस का कमाल था। हवा की दिशा यानी विंड डायरेक्शन का ध्यान रखा गया था, ताकि जब हवा चले तो सड़कों पर पड़ी धूल अपने आप उड़कर शहर से बाहर चली जाए। यह नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम था, लेकिन इनकी असली इंजीनियरिंग छिपी थी इनकी ईंटों में। उस जमाने में मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग धूप में सुखाई हुई कच्ची ईंटें इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हड़प्पा के लोग भट्टियों में पकाई हुई बेक्ड ब्रिक्स इस्तेमाल करते थे, जो हजारों साल तक पानी में गलने वाली नहीं थी। और यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो इनके कड़े प्रशासन को दिखाता है। चाहे आप हड़प्पा में ईंट उठाएं या वहां से 1000 किलोमीटर दूर लोथल में, हर ईंट का एक फिक्स रेशियो था, 1:24। यानी अगर ऊंचाई 1 इंच है तो चौड़ाई 2 इंच और लंबाई 4 इंच होगी। इतने विशाल इलाके में यह स्टैंडर्ड कैसे लागू हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। सड़कों से भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी जमीन के नीचे ड्रेनेज सिस्टम। दोस्तों, 18वीं सदी के लंदन और पेरिस में लोग सड़कों पर गंदगी फेंकते थे, लेकिन 5000 साल पहले हड़प्पा के लोगों के पास दुनिया का पहला कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था। हर गली के किनारे नालियां थी जो ईंटों या पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थी। इंजीनियरों ने पानी के बहाव के लिए नालियों में बहुत ही सटीक ढलान दी थी, और सबसे महत्वपूर्ण सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैन होल बनाए गए थे। गंदगी को छानने के लिए सोक पिट्स और जालीदार फिल्टर लगे थे, ताकि कचरा आगे जाकर नाली जाम ना करे। ये आज के मॉडर्न सीवेज सिस्टम एकदम हड़प्पा की कॉपी है। अब चलते हैं इनके घरों के अंदर। यहाँ के घर इस

भीड़भाड़ से नफरत करते थे और प्राइवेसी को बहुत मानते थे। ज्यादातर घरों का मुख्य दरवाजा मेन रोड पर नहीं खुलता था बल्कि पिछली गली में खुलता था। क्यों? ताकि सड़क की धूल और शोर घर में ना आए। हर घर के बीच में एक आंगन कोर्टयार्ड होता था और कमरे उसके चारों तरफ बने होते थे। दो मंजिला घर आम थे जिनमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां होती थी। और सबसे बड़ी बात, मोहन जोदड़ो में खुदाई के दौरान 700 से ज्यादा प्राइवेट कुएं मिले हैं, यानी पानी लेने के लिए नदी तक जाने की जरूरत नहीं थी। हर घर में अपना रनिंग वाटर सिस्टम था। कुछ घरों में तो दीवारों के अंदर पाइपलाइन फिट थी जो बाथरूम का पानी सीधे बाहर नाली में छोड़ती थी। लेकिन हड़प्पा इंजीनियरिंग का ताजमहल देखना हो तो हमें मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ को देखना होगा। यह एक विशाल स्विमिंग पूल जैसा ढांचा है, लगभग 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा। लेकिन यह नहाने के लिए नहीं बल्कि शायद धार्मिक रिचुअल्स के लिए था। यहाँ इंजीनियरिंग का वो नमूना मिला है जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। ईंटों की जुड़ाई के लिए उन्होंने जिप्सम के गाढ़े का इस्तेमाल किया और पानी लीक ना हो इसके लिए उन्होंने ईंटों के ऊपर बिट्यूमेन यानी डामर की एक परत चढ़ाई थी। यह दुनिया का पहला जात वाटरप्रूफिंग का उदाहरण है। 5000 साल पहले लीकेज प्रूफ टैंक बनाना, क्या यह साधारण बात है? सिर्फ पानी ही नहीं, ये लोग खाने को सुरक्षित रखना भी जानते थे। हड़प्पा में विशाल अन्नागार ग्रेनरीज मिले हैं। इनकी दीवारों में हवा जाने के लिए एयर डक्ट्स छोड़े गए थे ताकि अनाज सड़े नहीं और हवा लगती रहे। ये उस जमाने का कोल्ड स्टोरेज था। और इन अन्नागार में क्या रखा जाता था इसे हम जल्द ही जानेंगे। और अगर हम गुजरात के धोलावीरा की बात करें तो वह पत्थरों का शहर था जहां बाकी शहर ईंटों से बने थे। धोलावीरा में तराशे हुए पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। ये सारे सबूत ईंटों का रेशियो, ड्रेनेज और वाटरप्रूफिंग सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि वे लोग जुगाड़ से काम नहीं चलाते थे बल्कि उन्नत कलाकार थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। इतनी विशाल सड़कें, इतनी साफ नालियां बिना किसी राजा या प्रशासन के नहीं हो सकता। तो चलिए जानते हैं इस सभ्यता पर शासन करने वाला कौन था। दोस्तों, इतिहास का एक सीधा नियम है, जहां बड़ी सभ्यता होती है वहां एक बड़ा राजा होता है। मिस्र के पास फराओ थे जो अपने लिए पहाड़ जैसे पिरामिड बनवाते थे। मेसोपोटामिया में योद्धा राजा थे जो अपनी जीत के बड़े बड़े पत्थर गढ़वाते थे। लेकिन जब हम हड़प्पा की खुदाई करते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं। यहाँ 1000 साल तक राज चला, शहर बने, व्यापार हुआ, लेकिन हमें एक भी राजा की बड़ी मूर्ति नहीं मिली। कोई सोने का सिंहासन नहीं मिला, कोई बड़ा महल नहीं मिला जो बाकियों से अलग हो। तो सवाल ये है, आखिर इस 13 लाख किलोमीटर के साम्राज्य को चला कौन रहा था? वो कौन सी इनविजिबल पावर थी जिसका डर कश्मीर से लेकर गुजरात तक था? आर्कियोलॉजिस्ट के पास इसके लिए तीन बड़ी थ्योरीज हैं। द प्रीस्ट किंग मोहनजोदड़ो से हमें एक दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति मिली है। उसने एक शॉल ओढ़ रखी है जिस पर तीन पत्तियों का डिजाइन है। उसकी आंखों में एक अजीब सा ध्यान है। कुछ लोग कहते हैं कि यह वहां का धर्मगुरु या पुरोहित था जो धर्म के नाम पर शासन करता था, क्योंकि उस जमाने में धर्म और सत्ता एक ही थी। कुछ दूसरे विद्वानों का मत है कि यहां व्यापारियों के संघ का शासन था। यहां तलवार के दम पर नहीं बल्कि पैसे और व्यापार के दम पर राज होता था। हो सकता है कि वहां कोई एक राजा नहीं बल्कि अमीर व्यापारियों का एक काउंसिल हो जो मिलकर शहर के फैसले लेता था, जैसे आज किसी बड़ी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, या अलग अलग राज्य। कुछ का मानना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की अपनी अपनी अलग सरकारें थी, लेकिन उनके नियम कॉन्स्टिट्यूशन एक जैसे थे। सच चाहे जो भी हो, इतनी विशाल सभ्यता अपने आप नहीं चल सकती। पूरे क्षेत्र में एक जैसे अनुपात की ईंटें, एक जैसा शहर डिजाइन और समान नियम, यह सब इस बात की ओर इशारा करता है कि हड़प्पा में कोई ना कोई शासन व्यवस्था जरूर रही होगी। अब बात करते हैं समाज की। अक्सर कहा जाता है कि हड़प्पा में सब बराबर थे, लेकिन सच यह है कि इक्वेलिटी वहां भी थी और यह उनके शहरों की बनावट में साफ दिखती है। हर शहर दो हिस्सों में बंटा था। पश्चिमी टीला यह शहर का पश्चिमी हिस्सा था जो जमीन से 40 से 50 फीट ऊंचे कच्चे ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था। इसे चारों तरफ से मोटी दीवारों से घेरा गया था। यहाँ आम आदमी का आना मना था। यहाँ बड़े बड़े स्नानागार थे, सभा भवन थे और अनाज के विशाल गोदाम थे। इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ शासक वर्ग, पुजारी या शहर के टोप 1% अमीर लोग रहते थे। यह उस जमाने का VIP इलाका था।
दूसरी तरफ पूर्व में नीचे की तरफ बसा था आम शहर। यहाँ कोई चार दीवारी नहीं थी। यहाँ व्यापारी, कारीगर और

करेंगे इजाफा। और दोस्तों आज के इस खूबसूरत और सुरीले कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने वाला संस्थान बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी। जी हाँ, बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल यानी ज्ञान और संस्कारों के साथ आधुनिक तकनीक से शिक्षा प्रदान करने वाला हमारे संभाग का पहला आधुनिक तकनीक शिक्षण विद्यालय, जहां आपके नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ साथ उनके संस्कारों, उनकी प्रतिभा और उनके सर्वांगीण विकास पर दिया जाता है विशेष और व्यक्तिगत ध्यान। तो अपने

0: इश्क भी आरा करके देख लिया, जिंदे जी भी मर के देख लिया, घूट सबर का भर के देख लिया, ई बडिया में खून नहीं है, सब कुछ पा लिया जिंदगी में पर जिंदगी में सुकून नहीं है।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: दापुर की बात निराली।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 3:00 इस वक्त आप मेरे साथ टून का 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नए तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी याद 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

सिटी है दिल के पास, गलियों में यादें चौपाल की बात, अपनों के संग हर दिन खासत, किससे पुराने यादें सुहानी, हर चेहरे में एक नई कहानी, मेहनत से जिसने नाम बनाया इस पार्टी

0: में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: गुड इवनिंग दोस्तों वक्त हो चुका है 4 बज चुके हैं इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:07 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारे स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का।

दोस्त, वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाई 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: बाबू जी।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहूंगी?
0: गाना बड़ी
1: हेलो
0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते कवि जी, चौधरी निवेदन कर रहा हूँ अभी जी।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहूंगी?
0: गाना बढ़िया वाला सुनवा दो क्या?
1: हाँ जी बताइए।
0: पंडित जी ने हाथ मेरा।
1: पंडित जी ने
0: हाथ मेरा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिएगा ना रेडियस में कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

0: सचिन जी बोल रहे हैं।
1: बोलो ना भाई सर।
0: हेलो।
2: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
0: जी मैं उमा शंकर पटेल बोल रहा हूँ।
2: कहाँ से बात कर रहे सर?
0: पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: मैम मुझे सुना दीजिए आप, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया।
2: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर गाना रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी
2: हेलो।

0: नाम क्या है?
1: हेलो,
0: नाम क्या है मैम आपका?
1: सुना देवी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मिर्जापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?

0: हेलो
1: नमस्कार
0: सर, नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: साबिर बोल रहा हूँ सरकारी मैदान से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना है फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर।
0: हमारे यहाँ तो फरमाइश कर रहे हैं,

0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है?
1: माधव पटेल।
0: कहाँ से बात कर रहे हो माधव पटेल जी?
1: भोपाल से।
0: कौन सा गाना?
2: भोपाल माधव पटेल। कौन सा गाना सुनना?
0: मैम कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
3: दुनिया की चीज नहीं तू।
0: मैम कॉलिंग हो रही है, बताओ
2: कौन सा मैम?

अभिभावक नमस्कार, क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखना चाहते हैं? तो आइए बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि खेल

0: परसों संध्या के 6:62 यानी 7 बजने वाले ही थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम भजन संध्या।
1: सवाई माधोपुर, थारो मारो रेडियो डीएस।

तू किस बात पर इतराती है? मेरा वजूद तेरी इन झूठी ताकतों का मोहताज नहीं, क्योंकि जिसके मस्तक पर स्वयं त्रिकालदर्शी विराजमान हो,

जब सृष्टि अपनी अंतिम सांस लेगी, जब सूर्य का प्रकाश लुप्त होगा, जब समय भी स्वयं को भूल जाएगा, तब वह जागेगा, विनाश का अधिपति।

जिसे संसार मृत्यु कहता है, मैं उसी काल का संहार हूं। मेरे भक्त को भय कैसा, जहां मेरा नाम

0: पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर। शाम 4 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनें और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हृषि मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6, आपकी पसंद, आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
1: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

वो रिश्तों की मिठास गंगापुर सिटी है दिल के पास। गलियों में यादें, चौपाल की बात, अपनों के संग हर दिन खासत। किससे पुराने यादें सुहानी, हर चेहरे में एक नई कहानी। मेहनत से जिसने नाम बनाया, इस माटी ने उसको गले लगाया। खेती की खुशबू, शहर की रौनक, अपनों की बातें, दिल की धड़कन, हंसी खुशी और प्यार की बोली। गंगापुर

अभिभावक नमस्कार, क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखना चाहते हैं? तो आइए बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि खेल खेल में सीखने, संस्कार, अनुशासन और रचनात्मक गतिविधियों के साथ होती

0: फरमाइश, आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश, कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4:00 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हृष्य मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6, आपकी पसंद आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
1: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

भूषण सिंह गणेश आलोलिया इन दोनों आगे बैर ने। तू ध्यान रखिए, अगर आज की पार्टी में कुछ पंगा होया तो तेरे हाथ से जींद की सीट गई।